0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: जीवन की चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमारी क्षमता और साहस को पहचान दिलाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर और एक नई सीख लेकर आती है। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करता है वही सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। चुनौतियों से घबराइए नहीं क्योंकि संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत और सफल बनाता है।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें अस्वस्थ पशुओं की पहचान के संदर्भ में। साधारणतः जन्म के समय सभी पशु बीमारियों से मुक्त होते हैं, परंतु अपने आसपास के वातावरण व अन्य कारणों से धीरे धीरे वे बीमारियों के

0: शिकार हो जाते हैं। बीमारियों से बचाव करना उपचार की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है। एक किसान भाई को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि एक पशु में बीमारी के साधारणतः पहचाने जाने वाले कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिदिन अपने सारे पशुओं का निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि उनमें बीमारी के लक्षणों का पता समय रहते लग सके। इसके लिए सुबह व शाम के समय पशुओं की निगरानी करनी चाहिए। अस्वस्थ पशु के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार से हैं। स्वस्थ पशु चाव के साथ आहार ग्रहण करते हैं, परंतु बीमार पशु आहार खाने में आनाकानी करते हैं। वे जुगाली करना भी बंद कर देते हैं। अस्वस्थ पशु के हाव भाव, गति तथा व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यदि पशु सिर नीचा किए खड़ा हो या बहुत परेशान मालूम पड़ रहा हो, तो उसके अस्वस्थ होने की आशंका अधिक होती है। अस्वस्थ पशु समूह के अन्य पशुओं से अलग थलग रहते हैं। किसान भाइयों, पशुओं की त्वचा मुलायम तथा लचीली होनी चाहिए। खुरदुरी तथा शुष्क त्वचा बीमारी की सूचक होती हैं। बालों का बहुत बड़ा होना, गिरना अथवा चमक रहित होना ठीक नहीं होता। बालों के कोट पर धब्बे नहीं होने चाहिए। ये धब्बे बाह्य परजीवियों द्वारा खुजलाहट उत्पन्न करने के फलस्वरूप रगड़ने से पड़ते हैं। पशुओं के थूथन तथा नाक नम होनी चाहिए। नाक से पीले रंग का स्राव निकलना किसी बीमारी का सूचक हो सकता है। ज्वर से पीड़ित पशु का थूथन शुष्क हो जाता है। किसान भाइयों, पशुओं का तापमान कई परिस्थितियों में कम या ज्यादा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सामान्यतः पशुओं का तापमान 101.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। किसान भाइयों, सामान्यतः गो पशुओं की नाड़ी की गति 50 से 60 धड़कन प्रति मिनट होती है। ज्वर से पीड़ित पशु की श्वास की गति व गहराई बढ़ जाती है। सामान्य श्वास की गति गो पशुओं की 20 से 25 प्रति मिनट होती है। इसे किसान भाई गो पशु के थूथन के आगे अपना हाथ रखकर गिन सकते हैं। खांसी तथा दर्द भरी श्वास के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ पशु के आंख तेज होते हैं तथा आंखों में चमक होती है। ज्वर की अवस्था में आंखें धसी हुई, स्थिर तथा घूरती हुई मालूम पड़ती है। आंखों में गीलापन नहीं होता। यदि आंखों में कीचड़ निकले और आंखें चिपचिपी हो, तो इसका भी उपचार करवाना चाहिए। किसान भाइयों, स्वस्थ गो पशुओं का गोबर अर्धठोस तथा गहरा होता है। उसमें हवा के बुलबुले या खून के थक्के या म्यूकस नहीं होते। पशुओं में कब्ज व पतले दस्त को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये भी बीमारियों के कारण हो सकते हैं। पेशाब साफ तथा हल्के पीले रंग का होना चाहिए। पेशाब अधिक गहरा या खूनी रंग का नहीं होना चाहिए और ना ही उससे कोई दुर्गंध आनी चाहिए। किसान भाइयों, इन सभी लक्षणों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पशु स्वस्थ हैं या उनमें किसी बीमारी के लक्षण हैं। पशुओं में बीमारी के लक्षण देखते ही उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग कर लें तथा पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह लें।
1: अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस ईक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार

0: out after a hard-fought nil draw in the reverse fixture of the FIH Hockey Pro League in London yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी भारत सीमा माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल मंगलवार 30 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए एमवी कालीघाट कल मंगलवार 30 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और बुधवार 1 तारीख को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर शुक्रवार 3 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शनिवार 4 तारीख को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी नालंदा जलयान के स्थान पर अब एमवी कैम्बल बे ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और बुधवार 1 जुलाई को सवेरे 10 बजे कैम्बल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

भी रंगत शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी मंगलवार 30 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए MV जॉली बॉय आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। यह जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप के लिए MV कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल मंगलवार 30 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल मंगलवार 30 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए MV कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

मुस्कुराती हुई सुबह के साथ आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का शुरू के इस बेहद खूबसूरत और मखमली सफर में। दोस्तों, वक्त की एक बड़ी अजीब फितरत होती है, ये ठहरता नहीं बस गुजर जाता है। लोग बिछड़ जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं और पीछे छूट जाती हैं तो बस कुछ धुंधली सी यादें। लेकिन कभी कभी वक्त भी हार मान जाता है, जानते हैं कब? जब किसी दराज के कोने से या किसी पुरानी डायरी के पन्नों के बीच से अचानक वो एक तस्वीर मुस्कुरा उठती है। जमाना बीत गया उनको जुदा हुए हमसे, मगर आज जो देखा तो वो तस्वीर नई निकली। तस्वीर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, ये गुजरे हुए कल का एक जिंदा दस्तावेज होती है। जब वो सामने आती है तो दिल का कोई कोना चुपके से धड़क उठता है और लबों पर एक मुस्कुराहट तैर जाती है। तो चलिए यादों के इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं।

0: तस्वीर मिल गई।
1: दोस्तों, तस्वीरें केवल यादों को संजोती ही नहीं बल्कि कभी कभी दिल की भावनाओं को भी अपने भीतर छिपा कर रखती है। जब कोई अपना दूर हो जाए तब उसकी तस्वीर ही उसके स्नेह, उसकी मुस्कान और उसके साथ बिताए पलों का एहसास दिलाती रहती है। तस्वीरों से जुड़ी इन्हीं मधुर एहसासों को आइए सुनते हैं।

दोस्तों, तस्वीरें केवल यादों को संजोती ही नहीं, बल्कि कभी कभी दिल की भावनाओं को भी अपने भीतर छिपा कर रखती है। जब कोई अपना दूर हो जाए, तब उसकी तस्वीर ही उसके स्नेह, उसकी मुस्कान और उसके साथ बिताए पलों का एहसास दिलाती रहती है। तस्वीरों से जुड़ी इन्हीं मधुर एहसासों को आइए सुनते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत में जब कोई बहुत दूर चला जाता है तो पीछे रह जाती है कभी न मिटने वाली तड़प और एक खामोश इंतजार। लेकिन इस दूरी के दरमियान एक आशिक का सबसे बड़ा सहारा होता है उस शख्स की एक तस्वीर, जिसे दुनिया की नजरों से छुपाकर दिल के सबसे महफूज कोने में रखा जाता है।

तो दोस्तों, तस्वीर एक ऐसा शब्द जो केवल रंगों और रेखाओं का मेल नहीं, बल्कि अनगिनत यादों और कहानियों का आईना है। कुछ तस्वीरें समय के साथ धुंधली हो जाती है, लेकिन उनसे जुड़ी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में जीवित रहती है। इन्हीं विचारों के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि तस्वीर विषय पर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपके मन में किसी कोने में सजी यादों को एक नई रोशनी दे गई होगी। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी शाहिना। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 284वीं कड़ी।

सीता को पवन पुत्र के श्री राम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता।

0: श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 284वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए, समुद्री क्षेत्रों पर अल नीनो के प्रभावों का आकलन करेगा विशेष बुलेटिन पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने

समुद्री क्षेत्रों पर विकसित हो रही अल नीनो घटना के संभावित प्रभावों के संबंध में विशेष अल नीनो बुलेटिन जारी करना शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों जैसे मछुआरे, नौवहन कंपनियां, बंदरगाह प्राधिकरण, अपतटीय उद्योग और तटीय प्रशासन को समय रहते वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे संभावित जोखिमों के लिए तैयारी कर सकें। पहला विशेष बुलेटिन पिछले सप्ताह 22 जून को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में चेवेल्ला संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी द्वारा जारी किया गया। इस बुलेटिन के अनुसार वर्तमान अल नीनो घटना लगातार विकसित हो रही है और इसके इस वर्ष नवंबर से जनवरी 2027 के बीच चरम पर पहुंचने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का आकलन है कि इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान अप्रैल मई 2027 तक सामान्य से अधिक बना रह सकता है। विशेष रूप से उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री पारितंत्रों पर अतिरिक्त ऊष्मीय दबाव पड़ने की आशंका है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शामिल है। अल नीनो पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण जलवायु घटनाओं में से एक है। यह प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्री सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से उत्पन्न होता है और वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहते बल्कि हिंद महासागर सहित दुनिया के अनेक समुद्री और वायुमंडलीय क्षेत्रों तक पहुँचते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जून 2026 में जारी अपने आकलन में कहा है कि इसके वर्ष के उत्तरार्ध तक बने रहने की संभावना 90% के आसपास है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन ने भी संकेत दिया है कि यह घटना वर्ष 2026 इस वर्ष के अंत तक और अधिक मजबूत हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के विशेष बुलेटिन में समुद्री पारितंत्रों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण समुद्री ताप लहरों की घटनाएं बढ़ सकती हैं। समुद्री ताप लहरें ऐसी स्थिति है जिसमें किसी समुद्री क्षेत्र का तापमान लंबे समय तक सामान्य स्तर से काफी ऊपर बना रहता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात है कि ऐसी घटनाएं समुद्री जैव विविधता, मत्स्य संसाधनों और प्रवाल भित्तियों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने भी हाल के महीनों में अरब सागर में बढ़ती समुद्री ताप लहरों की घटनाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन के अनुसार मार्च से मई 2027 के दौरान उत्तरी हिंद महासागर में ऊष्मीय दबाव सर्वाधिक रहने की संभावना है। इससे प्रवाल भित्तियों के विरंजन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अनेक मछली प्रजातियों के प्रजनन एवं आश्रय स्थल के रूप में कार्य करती हैं। समुद्र के अत्यधिक गर्म होने पर प्रवाल अपने सहजीवी शैवालों को खो देते हैं जिससे उनका रंग फीका पड़ जाता है और लंबे समय तक तनाव बना रहने पर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। मत्स्य क्षेत्र पर संभावित प्रभाव भी इस बुलेटिन का महत्वपूर्ण पक्ष है। समुद्र के तापमान में परिवर्तन के कारण मछलियां अधिक अनुकूल जल क्षेत्रों की ओर पलायन कर सकती हैं, जबकि कुछ प्रजातियों के प्रजनन और वृद्धि चक्र पर भी असर पड़ सकता है। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि बदलती समुद्री परिस्थितियों के कारण मछलियां अपेक्षित आकार तक विकसित नहीं हो पाएंगी जिसका असर मत्स्य उत्पादन और मछुआरा समुदायों की आय पर पड़ सकता है। तटीय क्षेत्रों के संदर्भ में भी बुलेटिन महत्वपूर्ण संकेत देता है। मानसून के कारण बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अशांत रहने की आशंका व्यक्त की गई है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने सभी समुद्री संचालकों और संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे संस्थान द्वारा समय समय पर जारी अलर्ट चेतावनियों और परामर्शों का नियमित रूप से पालन करें। विशेष अल नीनो बुलेटिन की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और अगला बुलेटिन जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। बदलती समुद्री और जलवायु परिस्थितियों के बीच यह पहल भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था, तटीय समुदायों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा

0: के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
1: श्रोताओं, अभी आप समुद्री क्षेत्रों पर अल नीनो के प्रभावों का आकलन करेगा विशेष बुलेटिन पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। आइए अब सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:50 हुए हैं। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं

चलेंगी जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे पंकज उधास, अशोक खोसला, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर गंगूबाई हंगल को आप सुन सकेंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत RD बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार गीतों का आप लुत्फ उठा पाएंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में गाना लहरी कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पर चर्चा भी होगी। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर नाटक अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पर चर्चा और गीत भी आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम होगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 MHz FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स, और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें किमुएस गांव के सेंट पीटर्स चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर कलाकार होंगे पंकज उधास, अशोक खोसला, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। 4:45 पर बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे। पॉप मसाला कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे संध्या 6:30 पर। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे यादें, और रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं, और साथ ही विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक का कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं कुछ ही पलों में। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयन्ती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन्नवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: 100.9 MHz पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 3.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 28.9 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:58 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:47। श्रोताओं, अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

आपको फिर से बता दें, सवेरे 7:15 पर देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। सवेरे 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। 'गीत गाता चल' कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार गीत आप सुन पाएंगे 11:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पोलियो टीकाकरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आज और कल घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों की पहचान कर टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार द्वीप समूह में ई कचरा इन्वेंटरीकरण अभियान शुरू किया जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने सभी इच्छुक तीर्थयात्रियों से हज 2027 के लिए आवेदन

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल पोलियो टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत दक्षिण अंडमान जिले में 96%, मध्योत्तर अंडमान जिले में 100.6% और निकोबार जिले में कुल 101.3% बच्चों को कवर किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आज और कल घर घर जाकर पहले चरण के दौरान छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों और संगठनों से स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उपराज्यपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये पुरस्कार कला, वाणिज्य, शिक्षा, खेलकूद व संस्कृति और समाज कल्याण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 24 जुलाई शाम 5 बजे तक सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ गोपनीय सेल सचिवालय के पास जमा या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। नामांकन संबंधित जिलों के PCCF, DGP, प्रधान सचिव, आयुक्त, सह सचिव, सचिवों और उपायुक्तों द्वारा किया जाना चाहिए। अन्य विभागाध्यक्ष केवल अपने संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही सिफारिश कर सकते हैं। यदि किसी टीम को नामांकित किया जा रहा है तो टीम के प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और टीम में केवल अनुकरणीय कार्य दिखाने वाले व्यक्ति को ही प्रायोजित किया जाना चाहिए। ये पुरस्कार के लिए सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी व्यक्ति दोनों ही पात्र हैं। अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से 2रे DGP कप अंडमान निकोबार स्टेट ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि, पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक एकून और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट में 228 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह के दौरान विजेताओं को ट्रॉफियां, पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ओवरऑल ओपन कैटेगरी में विराट JS प्रथम, श्रेष्ठ विजय D द्वितीय तथा हरि प्रसाद भी तृतीय स्थान पर रहे। पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि शतरंज से न केवल आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है बल्कि ये उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रखने में भी मदद करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है ई कचरा इन्वेंटरीकरण अभ्यास और हज आवेदन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, थोक उपभोक्ताओं, छोटे उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के मालिकों, खुदरा विक्रेताओं, मरम्मत व सेवा केंद्रों के संचालकों और होटल व्यवसायियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत उनकी जिम्मेदारियों, ई कचरे को अलग करना, सुरक्षित भंडारण, दस्तावेजीकरण और केवल अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से निपटान के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि ई कचरे के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और निपटान का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट DSTPCC.andamannicobar.in

gov.in पर उपलब्ध है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में पूरे द्वीप समूह में ई कचरा इन्वेंटरीकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए फॉर्म जल्द ही कचरा उत्पादकों और थोक उपभोक्ताओं को ई कचरा उत्पादन की जानकारी एकत्र करने के लिए वितरित किए जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने सभी पात्र और इच्छुक तीर्थयात्रियों से हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 20 जुलाई मध्य रात्रि तक www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकते हैं। तीर्थयात्रियों को 30 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। हज 2027 के दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण निदेशालय स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। रंगत मॉनसून मैराथन 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्कूली छात्र, खिलाड़ी और आम जनता हिस्सा ले सकते हैं। इसमें पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ शामिल है। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये के साथ पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रतिभागियों से सुबह 5:20 तक निम्बूतला चौक पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। समाज कल्याण विभाग में मिशन वात्सल्य योजना के तहत अनुबंध के आधार पर मैनेजर कम कोऑर्डिनेटर के दोनों पदों के परिणाम समाज कल्याण विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं। इसके अलावा परिणामों की सूची विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रदर्शनी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्टिवल कल संपन्न हो गया। विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महोत्सव के दौरान परंपरागत व्यंजनों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। द्वीप खाद्य महोत्सव के कल अंतिम दिन कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी और नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र निम्बूडेरा ने कृषि विभाग और यूटी आत्मा के सहयोग से खेत बचाओ अभियान के तहत सतत कृषि पद्धतियों पर जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। ये कार्यक्रम डिकलीपुर ब्लॉक के सुभाषराम और मधुपुर गांव में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, संसाधनों के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने तथा कृषि आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पोलियो टीकाकरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आज और कल घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों की पहचान कर टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार द्वीप समूह में ई कचरा इन्वेंटरीकरण अभियान शुरू किया जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश हज समिति ने सभी इच्छुक तीर्थयात्रियों से हज 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिणी।

ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने अपने सपनों से पहले देश की आज़ादी का सपना देखा, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन हमारे देश का सिर कभी झुकने नहीं दिया। उन्हीं वीर सपूतों के अदम्य साहस और देश प्रेम को समर्पित ये गीत।

दोस्तों, देश की रक्षा करने वाले वीर जवान अपना आज हमारे सुरक्षित कल के लिए समर्पित कर देते हैं। उनके साहस, कर्तव्य और बलिदान के कारण ही हमारा तिरंगा हमेशा शान से लहराता है। उनका जीवन हमें देश प्रेम और राष्ट्र

दोस्तों, देश की रक्षा करने वाले वीर जवान अपना आज हमारे सुरक्षित कल के लिए समर्पित कर देते हैं। उनके साहस, कर्तव्य और बलिदान के कारण ही हमारा तिरंगा हमेशा शान से लहराता है। उनका जीवन हमें देश प्रेम और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।

दोस्तों, सफ़र लंबा हो तो हिम्मत बढ़ानी पड़ती है, कामयाबी के लिए मेहनत दिखानी पड़ती है। यूं ही नहीं मिल जाता मुकाम किसी को, यूं ही नहीं मिल जाता मुकाम किसी को, ख्वाबों की खातिर नींद गंवानी पड़ती है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना।

कुमार सानू की आवाज़ में ये था जब प्यार किसी से होता है फिल्म का गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने व संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार का वादा करते हैं तो सिर्फ लफ्ज नहीं अपना दिल भी सौंप देते हैं। सच्चा प्यार वही है जहां हर वादा पूरी ईमानदारी से निभाया जाता है। रिश्ते वादों से नहीं, उन्हें निभाने की नीयत से मजबूत बनते हैं, है ना?

समीर का लिखा एवं राम संपत का संगीतबद्ध किया हुआ ये था खाकी फिल्म का गाना। आवाजें थी उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। दोस्तों, जब किसी की खुशी ही हमारी दुनिया बन जाए, वही सच्चा इश्क होता है, जिसे दिल अपनी दुआ बना ले, उसके बिना हर खुशी अधूरी लगती है। तभी तो दिल कह उठता है, तुझ पे सनम मरने वाले तुझ बिन क्या जिएंगे।

0: आदे श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में तैयार ये था दिल तेरा दीवाना फिल्म का गाना। शब्दकार श्याम राज और लुबना खान व स्वर दिया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
2: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
1: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
0: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है।

0: मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाजों में ये था जान फिल्म का गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने व संगीत से सजाया था आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से चलते चलते यही कहना चाहूंगी कि किस्मत से ज्यादा मेहनत पर यकीन रखना सीखिए, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना सीखिए। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, बस अपने इरादों को कभी कमजोर मत होने दीजिए। इसके साथ ही अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इस कार्यक्रम से इजाजत।
1: Good morning, Andaman.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी।

0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले

0: सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्नपत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेनदेन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर

0: सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112341 7 0112371 7 0116 और 0112341 4 4 4 4। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, मां के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, मां को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards.

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे पंकज उधास, अशोक खोसला, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने आराधना फिल्म से लिया था, जिसे गाया था किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी के थे, वधुन तैयार की थी SD बर्मन ने। अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनुरोध फिल्म का गाना, बोल आनंद बख्शी के हैं, वह संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं नसीब फिल्म का गाना। शब्दकार आनंद बख्शी व आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन

0: जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTी। तो ARTी बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV/AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTी रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, इस समय आप फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने सुन रहे हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये था दो रास्ते फिल्म का गाना। शब्दकार आनंद बख्शी व स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने। श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फकीरा फिल्म से। गीत व संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए गंगूबाई हंगल का हिंदुस्तानी शैली में गायन। इनके साथ तबले पर हैं श्री शेषगिरी हंगल, हारमोनियम पर श्री वसंत कनकपुर और तानपुरे पर मदन भोंगले ने संगति की है। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं इनका राग भैरव जो एक ताल पर निबद्ध है।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गंगूबाई हंगल का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अप्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अफलातून से। गायक कलाकार है ललित सेन और श्वेता, संगीतकार है दिलीप सेन समीर और रचनाकार है आनंद बख्शी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से। संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, गाया है शिल्पा राव ने और रचना की है स्वानंद किरकिरे ने।

सोनू निगम और जसबिंदर नरूला के आवाज़ों में आइए सुनते हैं दूल्हे राजा फिल्म का ये गीत, संगीत आनंद मिलिंद का और गीत रचना समीर की।

समीर का लिखा गीत व अनु मलिक का संगीतबद्ध किया ये है सोल्जर फिल्म का गीत, जिसे गाया है जसपिंदर नरूला और सोनू निगम ने।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान के स्वरों में आइए सुनते हैं इश्क इन पेरिस फिल्म का ये गीत। धुन तैयार किया है साजिद वाजिद ने, रचना कौसर मुनीर की।

समीर का लिखा हुआ, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ, सुनिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

अगला गीत मिका सिंह, भव्या पंडित और योयो हनी सिंह के स्वरों में। आइए सुनते हैं समीर अंजान का लिखा हुआ, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया हुआ, और फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार।

लता मंगेशकर और उदित नारायण के आवाज़ों में आइए सुनते हैं जब प्यार किसी को होता है फिल्म का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मक्खी फिल्म से, जिसे गाया है काला बहिरवा ने, संगीत MM क्रीम का और रचना की है अनुज गुरवारा ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1316वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं

0: उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा, हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से,
0: हैं?
1: कह देती हूँ। हाँ या तो कल एक

0: पास पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह
1: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन
0: देखो।
1: तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक?
1: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
3: क्या भूल बैठकर बातें कर रहे हो दोनों?
1: कुछ नहीं,
3: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं,
3: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
3: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे क्या हुआ?
1: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
0: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे। अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप्पा चुप्पा,
0: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू, चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी,
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।

0: जाएंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
1: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
2: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
2: अम्मा क्या सोच रही है?
3: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
1: ये जामुन?
3: हाँ
1: चलो इसी को काट देते।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
1: हाँ।
2: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
3: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
1: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
3: हाय रे, बात तो तुम्हारी सच है।
2: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
3: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
3: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
3: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
3: हाँ हाँ
1: चलो
3: चलो, आगे चलकर देखते हैं।
1: चलो ये देखो ये पेड़,
3: देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
3: चलो, इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
1: ध्यान से बेटा।
2: आई
3: क्या हुआ चुप्पा,
1: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
3: अरे दिखा दो
2: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
3: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
3: अरे नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
3: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
3: क्यों?
2: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
3: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
3: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
3: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
3: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा, चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
3: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
3: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में,

0: है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: ओ जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा, हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
0: तू समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे। फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
0: सच्ची।

0: रहना चाहिए।
1: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
2: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
1: किसी ने कहा,
3: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
1: किसी ने कहा,
4: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
1: किसी ने कहा,
5: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
1: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
1: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
2: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1316वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनते हैं प्रसिद्ध संगीतकार आर डी बर्मन के कुछ प्रसिद्ध गाने।

हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार आरडी बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन है। उनका जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें पंचम दाभी कहा जाता था।

श्रोताओं, आरडी बर्मन के परिवार के बारे में यदि हम बात करें तो उनके पिता का नाम सचिन देव बर्मन है। ये हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे और उनकी माता मीरा देव बर्मन भी गीतकार और संगीतकार थी। संगीत का वातावरण उन्हें परिवार से ही मिला।

श्रोताओं, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की क्योंकि उन्होंने कम उम्र से ही फिल्मी संगीत में अपना करियर शुरू कर दिया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just rupees 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
2: Nexa.
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आरडी बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में किया। शुरुआती दौर में वह अपने पिता के संगीत सहायक थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया।

श्रोताओं, 70 के दशक के आरंभ में आर डी बर्मन भारतीय फिल्म जगत के एक लोकप्रिय संगीतकार बन गए। आर डी बर्मन ने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। यादों की बारात, हीरा बन्ना, अनामिका आदि जैसे बड़े फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया।

आर डी बर्मन की बतौर संगीतकार अंतिम फिल्म अ लव स्टोरी रही और वर्ष 1994 में इस महान संगीतकार का निधन हो गया। इनके शानदार संगीत करियर के लिए इन्हें 3 बार प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV/AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: Drive smart, drive Maruti Suzuki Alto Caton, जिसमें है माइलेज ऑफ 24.90 किलोमीटर पर लीटर, स्मार्ट प्ले स्टूडियो, 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, नेक्स्ट जेन के सीरीज 1.0 लीटर ड्यूल जेट, ड्यूल विविट इंजन और स्पेशियस इंटीरियर्स। बाय ऑफर्स अप टू 40,500, ऑफर्स स्टॉक रहने तक ही।
5: आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति डीलरशिप। शर्तें लागू।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के

धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ,
0: किसने लिखा है मालूम है? दुड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दुड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहावू हारू तिहावू
1: हारू तिहावू हारू तिहावू
0: कडल करेया खगा कुला
1: कडल करेया खगा कुला
0: येनी तो मुगीला
1: येनी तो मुगीला उद्द अगला
0: जी की दानी तू
1: जी की दानी तू
0: बांदला
1: बांदला।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है।
1: हाँ,
0: आगे का स्टंजा है बान लोक नगुआ नाका
1: बान लोक नगुआ नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिखिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिखिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बजे
1: व्योम कानुआ बजे
0: हसीव मरेसी
1: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ,
0: लिखते
1: हाँ,
0: हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ।
0: इसको हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ? हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताइए।

0: संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती है।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहले अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप समूह गान शिक्षा कार्यक्रम सुन रहे थे।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला व्हाट्सएप हमें आया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। हमारे ये श्रोता

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इजदार और नरगिस खातून सुनना चाहते हैं सनम रे फिल्म का ये गीत।

सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान ने फरमाइश की है फिल्म आराधना का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंदाज से। पसंद किया है बीड शहर। महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि कारवां, बाला साहिब कारवां, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पी बी कुलथे ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही यह कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान

0: के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा सातवीं, आठवीं और नवीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई।

मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

0: और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में 4:00 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4:00 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव फ़ोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और आज जिन श्रोताओं से हम जुड़ेंगे उसकी सूची पहले से ही तैयार है, तो आइए देर ना करते हुए बात करते हैं आज के हमारे पहले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो
1: हेलो
0: जी, मैं क्या ज्योतिका से बात कर रही हूँ?
1: जी जी मैं ज्योतिका बोल रही हूँ।
0: जी ज्योतिका जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो ज्योतिका जी बताइए, आप कैसे हैं?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: जी बताइए कि आप क्या करते हैं?
1: जी मैम, मैंने अभी अपना बीकॉम ख़त्म किया है।
0: जी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं रंगत से बोल रही हूँ।
0: जी जी तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहोगे?
1: जी मैम, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैम मैं शिवाय मूवी का दरखास्त गाना सुनना चाहूँगी।
0: जी जी और किसे डेडिकेट करना चाहोगे?
1: इस गाने को मैम मैं मेरे फैमिली को एंड माय फ्रेंड।
0: जी जी तो चलिए सुनते हैं आपका ये पसंद का गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी नमस्ते मैडम।
0: जी, क्या क्या इस वक्त हमारी बात योगेश जी से मध्य प्रदेश से हो रही है?
1: जी मैडम, योगेश सिनारिया बोल रहा था, इंदौर मध्य
0: जी
1: प्रदेश।
0: जी योगेश जी, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैडम। मैडम
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं एक वायरमैन हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पैनल बनते हैं, इसमें मेरा वायरिंग का काम है मैडम, पैनल वायरिंग का।
0: जी, योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, तो हमें
1: जी
0: वहाँ
1: मैडम,
0: के मौसम के बारे में बताइए।
1: मौसम तो अभी थोड़ा बारिश बारिश जैसा है, बारिश हो नहीं रही है, बाकी मौसम है ऐसा, बादल वगैरह हैं, धूप सुबह से बहुत तेज हो जाती है, दोपहर होते होते थोड़े बादल वगैरह हो जाते हैं, थोड़े बहुत छींटे आ जाते हैं कभी कभी, बाकी
0: जी,
1: जैसी होना चाहिए ऐसी बारिश अभी हो नहीं रही है, काफी
0: अच्छा है।
1: उमस वाली गर्मी हो रही है।
0: जी, तो योगेश जी, आपको किस तरह के गाने सुनना पसंद है?
1: नए गाने भी पसंद है, बाकी जो बीच में जो 90s के आसपास के रहते थे ना गाने,
0: जी,
1: 90 से 2000 के बीच के, वो गाने थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। म्यूजिक वगैरह ठीक ठाक है, तो उस
0: जी
1: समय
0: जी
1: सिंगर भी मतलब काफ़ी अच्छे से उसको गाते थे,
0: जी जी
1: अभी
0: जी
1: नए में क्या इतना अच्छा नहीं लगता है,
0: जी तो
1: नए गाने बहुत
0: योगेश
1: अच्छे
0: जी, इस
1: लगते थे,
0: कार्यक्रम के
1: फिल्में भी अच्छी
0: महत्व,
1: बनती थी उस समय की, तो
0: जी,
1: स्टोरी ठीक रहती थी, गाने भी अच्छे रहते थे।
0: जी, तो योगेश जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे? हेलो
1: हेलो,
0: हेलो जी, योगेश जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो
1: हेलो,
0: हेलो योग हेलो श्रोताओं, लगता है इस वक्त हमारा संपर्क कॉलर के साथ टूट गया है। हम जल्द ही जुड़ेंगे अगले कॉलर से, तब तक के लिए सुनते हैं ये गीत।
1: संपर्क कट गया यार।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।
0: और आप बताइए कैसे? और
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं अमल जी?
0: जी मैं भी अच्छी हूँ। आज बारिश है हमारे यहाँ पे, बारिश
1: जी
0: चल रहे
1: जी
0: है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रहा है। जी
1: जी। क्या करते हैं आप?
0: हम तो किसान का काम करते हैं घर पे, और अभी धान का खेती लगाना शुरू हो चुका है।
1: जी। तो अमल जी, आपको किस तरह के गाने सुनना पसंद है, नए पुराने?
0: जो मैं 90s वाला ज़्यादा पसंद आता है, कुमार शानू वाल का या आदित्य नारायण वाला सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगता है।
1: जी। तो अमल जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज कौन सा गीत सुनना चाहोगे?
0: जी मैं सपने सजन की मूवी से गाना सुनना है, शिकवा करो या शिकायत करो।
1: जी। और
0: और
1: ये गाना आप किन के साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा अभी।
1: जी
0: सोर आईडी सुनारिया असम से भाईकोन मुंडा है,
1: जी
0: और धेमाजी असम से बिमल बसुमतारी है, गोलाघाट असम से रमेश पात्र है, और कार्बी आंगलोंग असम से जगेंद्र रोंगपी है,
1: जी जी
0: और हितेंद्र दास है, रुखुबिला मिठा है, चंद्रकांत टाइट है, संध्या रानी गोगोई है, और हमारा सौरभ द्वारा है, और हमारे दिल्ली से बहुत अच्छे दोस्त है जिनका नाम है धर्मवीर है, और महाराष्ट्र से तानुश्री है, और राकेश है शिमला से, और भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति है, सुनील झा है, और सभी हमारे जो विधिक्रम सुनने वाले दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ,
1: जी
0: और पहले जो कॉलर आया था उनको भी डेडिकेट रहूँगा
1: जी जी जी तो अमल
0: और
1: जी,
0: आपको
1: इस
0: भी।
1: जी जी अमल जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार दीदी। हाँ
0: जी, क्या इस वक्त हमारी बात अमल जी से हो रही है असम से?
1: जी, मैं आसाम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, सोनीतपुर असम रंगापारा से। आप
0: जी, आप
1: कैसे हैं और प्रोग्राम में शामिल करने के लिए पहले सब

0: श्रोताओं, कुछ और दोस्तों से हम जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit

0: www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लाइव फ़ोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में, और हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। चलिए बात करते हैं हमारे और भी दोस्तों के साथ। हेलो डियर फ्रेंड।
2: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्ते।
1: जी नमस्ते। क्या इस वक्त हमारी बात मोहन लाल राजस्थान से हो रही है?
2: हाँ जी, मोहनलाल प्रजापत, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
1: जी जी मोहनलाल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: खमागणी हुकम, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया हूँ, और धूल भरी आंधी भी चल रही है, और बरसात का 4-5 दिन के बाद में अलर्ट भी है।
1: जी जी जी,
2: और आपके बाद तो शायद बरसात होगी पूर्वोत्तर सेवा में।
1: जी जी जी, तो बताइए आप क्या करते हैं?
2: हाँ, मैं किराना की रेहड़ी लगाता हूँ और आपको समय समय पर कॉल करता रहता हूँ।
1: जी जी जी, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: हाँ, फिल्म का नाम है फर्ज।
1: फर्ज फिल्म के?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: वो हसीना।
1: जी जी जी जी, मोहनलाल जी, आप खाली समय में आपको क्या करना पसंद है? हेलो।
2: हाँ जी
1: जी, खाली समय में आप क्या करना पसंद है आपको?
2: खाली समय में तो वैसे तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन धंधे में व्यस्त रहते हैं।
1: अच्छा जी जी, मोहनलाल जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
1: जी जी, तो चलिए आप सुनते हैं आपका आपकी पसंद का ये गीत।
2: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो जी
0: जी, क्या इस
1: मैम,
0: वक्त
1: नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार नमस्कार। क्या इस वक्त हमारी बात कांता जी से हिमाचल प्रदेश से हो रही है?
1: हाँ जी मैम,
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैम जी। कांता वर्मा बोल रही जी, हिमाचल प्रदेश, सोलन, शिमला, कसौली, गांव छटेरा से जी।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं आंगनबाड़ी में टीचर हूँ मैम जी।
0: जी, टीचर है।
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी, और
0: जी
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, मेरे को इसमें जोड़ा जी, गोल्डी भैया वगैरह है ना जी कांगड़ा के, उन्होंने दिया जी नंबर
0: जी जी जी
1: दिया।
0: जी
1: हाँ जी, हाँ
0: धन्यवाद।
1: जी,
0: तो जैसा कि आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो हमें वहाँ के कुछ खास जगहों के बारे में बताइए जहाँ हम घूमने जा सकते हैं।
1: बिल्कुल जी। मैं थोड़ा सा लाइन में गाने में बता देती हूँ मैम, थोड़ा सा ना।
0: जी,
1: सभी देशा दे शो बटा, मारा हिमाचल प्यारा हो। डूंगिया डूंगिया नदिया एथिरी,

जहोया मारे भरती फौजा दे लाज देशारी बचाने हो। तगड़े तगड़े गबरुए थी रे बाकी।

0: बज के ढोल नगाड़े हो, सभी देशा देशो बटा, मारा हिमाचल प्यारा हो। हाँ जी
1: जी बहुत खूब गाया गाया आपने कांता जी।
0: और यहाँ पे हिमाचल में घूमने के लिए बहुत अच्छा है मैम, कसौली भी बहुत अच्छा घूमने को है जी, हमारा टीबी टोर है, वहाँ पे रडार भी है जी, और मार्केट अच्छी है जी,
1: जी जी
0: और सोलन भी हमारा बहुत अच्छा है जी, और शिमला आगे बहुत अच्छा है जी, जाखू जाओ, रोडू जाओ,
1: जी
0: और चायल जाओ जी, बहुत अच्छा है जी, कुल्लू मनाली किन्नौर
1: जी
0: पांगी,
1: जी
0: तो बर्फ पड़ रही जी वहाँ पे
1: जी
0: तो,
1: जी
0: और हमारे भी बहुत ठंडा मौसम है जी, 28 टेम्परेचर हमारा हिमाचल का जी,
1: जी जी
0: यहाँ
1: तो
0: का और ठंडा मौसम है जी।
1: जी जी तो कांता जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: आप सुना दो मैडम जी, रोटी मूवी का सुना दो जी,
1: जी जी
0: गोरे रंग पे तो इतना गुमान न कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। हाँ
1: जी
0: जी
1: जी जी कांता जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनते
0: और
1: हैं।
0: मैम आपने बहुत ही प्यारे प्यारा प्रोग्राम कर रहे जी आप, और बहुत ही मजा आया जी आपके साथ बात करने का मैम जी,
1: जी जी
0: तभी
1: जी
0: हिमाचल घूमने आओ जी,
1: जी जी ज़रूर ज़रूर
0: और जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे होंगे उनको ये गाना डेडिकेट है मैडम जी, और आपको भी जो हमारे उद्घोषित बैठे हुए स्टूडियो
1: जी
0: में उन सबको जी।
1: जी जी कांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
0: थैंक यू
1: चलिए
0: मैम
1: सुनते
0: जी।
1: हैं आपका ये पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो हेलो डियर फ्रेंड।
1: दीदी जी नमस्कार।
0: जी, नमस्कार।
1: मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंठी से।
0: जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी जी, आपकी दुआएं हैं बहुत अच्छे हैं। और अभी अभी यहाँ ठंडी ठंडी आवाज चल रही है और शायद फोन के माध्यम से आपकी उधर भी ये आवाज सुनाई देती होगी।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: जी, तो फिर खाली वक्त पे आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: खाली वक्त में हम तो रेडियो सुनते हैं और कोई भी अच्छा काम हो, साफ सफाई का ध्यान करना, फ्री टाइम में यही रहता है।
0: जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है।
1: जी,
0: जी, तो आपका पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम कौन सा है?
1: मैं जो खेती किसानी वाले जो कार्यक्रम आते हैं मुझे
0: जी जी
1: बहुत अच्छे
0: जी
1: लगते हैं, वहाँ से मुझे जानकारियाँ मिल जाती हैं।
0: जी जी जी तो पंछी राम जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: दीदी जी आज मैं गाना सुनूंगा, जॉनी मेरे नाम का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, और मेरे साथ में मेरे बहन भाई पुष्कनाथ जी, रिंकू देवी, बाकी अविनाश जी है
0: जी,
1: और राकेश जी है, पूरण वर्मा जी है, और सभी सुनने वाले जितने भी हैं आपके माध्यम से मैं सबको, आपके साथ मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम, प्यारे प्यारे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
0: जी, धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार मैम
0: नमस्कार नमस्कार जी
1: जी। हम धेमाजी असम जुनाई मेसाखी सपुरी से विमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: जी जी जी विमल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद मैम, मुझे फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद मैम।
0: जी जी जी तो विमल जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम ठीक है। मेरा दुकान है, सिलाई का काम करता हूँ मैं। दुकान से अभी गान सुन के दुकान से फोन कर रहा हूँ मैम।
0: जी, और वहाँ पर मौसम कैसा है?
1: मौसम मैम आज थोड़ा धूप भी निकल रहा है, बारिश भी आ रहा है और थोड़ा खराब खराब है मैम। कल सुबह हम लोग का इधर धेमाजी का इधर एक ब्रिज टूट गया
0: जी जी
1: पानी से,
0: जी
1: ट्रेन का ब्रिज। अभी ट्रेन आना जाना बंद हो गया मैम।
0: अच्छा जी। तो विमल जी, बताइए खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं?
1: जी मैम, हम खेत का काम करता हूँ और दुकान में रहता हूँ, सिलाई का काम करता हूँ, दुकान से और खेत के काम करता हूँ मैम।
0: जी। तो विमल जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैम, हमको सुनाना है जिगर फिल्म का प्यार की कागज से, ये गाना।
0: जी। और ये गाना आप किसके साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, मेरा दोस्त के लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है सोनितपुर असम से, ओमोल बसुमतारी, फाइकोन मुंडा, रमेश पात्र, और है दिल्ली से है।

0: बीर, राकेश, गोल्डी, रमेश प्रजापति, भगवान सिंह फरमार, गोल्डी, प्रेम सिंह ससदिया, और है संध्या रानी गगोई, चंद्रकांत टाइप, विनोद गगोई, अजित कुमार शर्मा, दिवाशीष हजरिका, सब के लिए मैम डिलीट करना चाहते हैं और आपको भी मैम।
1: जी जी जी तो विमल जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: जी जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद मैम।
1: जी जी

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, बचपन ज़िंदगी का वो खूबसूरत सफ़र है जहाँ छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी लगती थी। ना किसी बात की फ़िक्र थी, ना किसी मंजिल की तलाश, बस हर दिन एक नई कहानी और हर पल एक नई मुस्कान लेकर आता था। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन बचपन की यादें हमेशा दिल के सबसे करीब रहती है।

दोस्तों, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें मासूमियत होती है। सपने होते हैं और ढेर सारी यादें होती है। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, पहले प्यार की वो मिठास, वो मीठी यादें हमेशा दिल के किसी कोने में मुस्कुराती रहती है।

श्रोताओं, बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं बल्कि एहसासों का भी एक खूबसूरत सफ़र है। बारिश की बूंदें कभी पुरानी यादें ताज़ा कर देती है तो कभी दिल को एक अलग ही सुकून दे जाती है। हर बारिश अपने साथ कुछ कहानियाँ, कुछ यादें और कुछ अनकहे जज्बात लेकर आती है।

दोस्तों, इंतज़ार एक ऐसा एहसास है जो हर धड़कन को किसी खास पल से जोड़ देता है। और जब इस इंतज़ार में पहली मोहब्बत की मासूमियत और बारिश की बूंदों की खनक शामिल हो जाए, तो हर पल और भी खूबसूरत लगने लगता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हम अपनी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निकोबारी कार्यक्रम से।
1: सिनला मेन योक्रे हमांग इंगिरी तका लमक तेलगम मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक 634 किलोहर्ट्ज़ रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम मनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांगा।

होय ते हंगी तर तने तहा लेन लंग तह तिन क क इन फे क स काम वे होल ही हंगम सेंट पीटर चर्च यट्राहन।

श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय संध्या के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंकज उदास, अशोक खोसला, भूपेंद्र सिंह तथा मिताली सिंह को। कार्यक्रम का आगाज करते हैं पंकज उदास की मधुर आवाज़ के साथ।

अशोक खोसला के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रमों का विवरण।

लीजिए पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 4:45 पर आप फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन पाएंगे। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। शाम 5:30 पर आप सुन पाएंगे बांग्ला कार्यक्रम। किसानों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा 6:00। कार्यक्रम पॉप मसाला का समय रहेगा 6:30।

संध्या 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आनंद लिया जा सकता है 7:20 पर। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यादें। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। रोजगार समाचार व गौरवगान रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचारों का प्रसारण होगा। रात्रि 10:00 व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं। ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रेटिप्स का समय रहेगा प्रातः 5:55, जिसमें आप सुन पाएंगे कंटूर बंडिंग से संबंधित जानकारी। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर आप सुन पाएंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम जिंदगी शीर्षक पर। सवेरे 6:30 पर रामचरित मानस गान वतन के गीत सुनिए सवेरे 6:40 पर। मौसम की जानकारी कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर। जन सूचनाएँ सवेरे 7:00। सवेरे 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा। 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। वहीं प्राइमरी चैनल पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी।

सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप गुलाम अली को सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए दिन के 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में TS गोपाल कृष्णा का आप सुन पाएंगे। गीत गाता चल का समय रहेगा दिन के 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCRT की 1370वीं कड़ी चित्रलोक का आनंद लीजिए दिन के 11:30 पर। दोपहर 12:00 सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे बेगम अख्तर को दोपहर 1:10 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर बाद 2:30 पर हमारी प्राइमरी चैनल समाप्त होगी, लेकिन 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर आप सुनेंगे नॉनस्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से। संध्या 4:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। संध्या 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। संध्या 6:45 पर कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। इसके बाद संध्या 5:30 पर आप सुन पाएंगे बांग्ला कार्यक्रम। शाम 6:00 सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम। कार्यक्रम शाम में बहार का समय रहेगा 6:30। 7:05 पर आप प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे। मौसम की जानकारी, जलियांवाला का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप संध्या 7:15 पर सुनेंगे। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया युवानी के तहत। संध्या 7:30 पर कार्यक्रम होगा देश की शान चित्रपट संगीत रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। और रात्रि 10:00 का आनंद लीजिए व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश आते हैं। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:45 हुए हैं। अब हमारा कार्यक्रम सुनिए बहारों की शाम। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मी गीतों से सजा गीत सुनाते हैं। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अर्पण फिल्म के गीत के साथ। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को स्वर दिया है अनवर हुसैन ने व संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास द्वारा गाया आजा सनम का एक गीत आपको सुनवाएंगे, जिसके बोल फैज़ अनवर ने लिखे हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला गीत थानेदार फिल्म से। संगीतकार हैं पप्पी लहरी, गीतकार हैं इंदीवर तथा गाने वाले कलाकार हैं बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल।

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, असफलता से कभी हताश व निराश ना हो, बल्कि निरंतर प्रयास और परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आज के इसी विचार के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और साथियों, आज आपको बताना है, धान के खेत में क्या सिंघी और मांगुर मछलियों को पाला जा सकता है? भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। साथियों, मेरा आज का प्रश्न है कि धान के खेत में क्या सिंघी और मांगुर मछलियों को पाला जा सकता है? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल खेत बचाओ अभियान चल रहा है। ये अभियान भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जून से 30 जून तक चलेगा। ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य खेती की उर्वरता, मृदा स्वास्थ्य और किसानों को समृद्ध बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत किसानों को मुख्य रूप से संतुलित उर्वरकों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी जोर देना है और साथ

0: क्यों अब तक इस अभियान ने लाखों किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है और इसके तहत कई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आप सभी इस आयोजन का हिस्सा बनें और कृषि से संबंधित नई और वैज्ञानिक तरीकों का लाभ उठाएं। तो चलिए साथियों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर घनश्याम पांडे जी से और इनके साथ आज बातचीत का विषय रहेगा कंपोस्ट बनाने की सही तकनीक। तो भाइयों, करते हैं इनसे मुलाकात और इस विषय में लेते हैं ये जानकारी।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में आपसे जानें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कंपोस्ट है, इससे किसान भाई क्या समझें?
2: कंपोस्ट जो है, जैसे कि हमारे आम किसान भाई की एक धारणा है, जैसे गोबर की खाद है या जो वो प्रोडक्ट है, आप समझें कि जो उनका घर का हाउस होल्ड का जो वेस्ट मटेरियल है या फॉर्म का है या सब्जियों का है और गोबर की खाद है, ये सबको मिला करके इकट्ठा करके किसान भाई एक जगह इसकी डंपिंग करते हैं, एक ढेर बना देते हैं और उसकी वैज्ञानिक सिफारिश यदि हम करें तो उसमें एक स्टैंडर्ड साइज होता जो हम लोग रिकमेंड करते हैं और उसमें साइज में उसको गड्ढा बना करके और उसमें इन सब मटेरियल्स को इकट्ठा कलेक्ट करके उसमें डालें और ये होना ये चाहिए बरसात के पहले, रेनी सीजन के पहले। और रेनी सीजन के से मतलब ये है कि इसके पहले गड्ढा तैयार रहेगा, सारे मटेरियल उसमें डालेंगे तो जो पहली हमारी जो फर्स्ट सावर होगी रेनी सीजन की, उसमें इसको अपना रख करके इसका टर्निंग कर सकते हैं।
1: और तो मतलब ये जो सड़ी हुई जो खाद बन जाती है उसे कंपोस्ट कहते हैं,
2: उसको जो वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक जो ह्यूमस जिसे कहते हैं, वेल डिकम्पोज्ड डार्क टू ब्राउन इन कलर, मतलब काले रंग से भूरे रंग का जो होगा पदार्थ, उसको वेल डिकम्पोज जो मतलब सड़ा हुआ जो विघटित पदार्थ है उसको हम जो है कंपोस्ट कहते हैं।
1: अच्छा, मतलब कोई भी जैविक पदार्थ हो सकता है, पत्तियां भी हो सकती है, गोबर भी हो सकती है, मलमूत्र वगैरह जो भी है,
2: जी
1: सबका सड़ा हुआ जो रूप होता है पूरी तरह से सड़ा
2: जी,
1: हुआ
2: जी,
1: कंपोस्ट कहते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर सलाह दी जाती है किसान भाइयों को कि अधिक से अधिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करें ताकि जमीन की भौतिक दशा ठीक हो, उर्वरकता शक्ति बनी रहे, ये तमाम सारी बातें बताई जाती है
2: जी।
1: तो इसके पीछे बात क्या?
2: देखिए, इसमें ऐसा है कि एक आम धारणा है, यदि आप हम पीछे थोड़ा सा नजर डालें तो 1960 के पहले अगर आप देखें, यद्यपि उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी थी और हरित क्रांति आई 60 से 65 के दौरान, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अच्छा कार्य किया, अच्छी अच्छी नई किस्में पैदा की गईं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। लेकिन दो चीज़ें यहाँ होती हैं, एक तरफ तो आप देखें हमें पैदावार तो खूब मिली, हम सेल्फ सफिशियंट हुए खाद्यान्नों में, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा हम विचार करें तो हमारी जो मिट्टी की दशा, जो भौतिक दशा है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर हुई है।
1: अच्छा,
2: और आज तक यहाँ देखें कि हम इसको यहाँ से लें कि इन द्वीपों की यदि हम सामान्य रूप से जो हमने स्टडी की है तो उसमें हमने ये पाया है कि जो न्यूट्रिशनली जो है यहाँ की सॉइल है वो आमतौर से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है।
1: अच्छा,
2: इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की बहुतायत मात्रा उपलब्ध नहीं है, कहने का मतलब न्यूट्रिशनली जो सॉइल अंडमान की है वो पुअर है। तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि हम बाहर से इसमें खाद्य पदार्थ मिलाएं। हमें ये मालूम है कि पौधों को लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास प्रमुख हैं और उसके अलावा आए कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन जिंक बोरान इत्यादि, और इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं। तो सबका जो कहने का जो निचोड़ है, जो उपसंहार है, कंक्लूजन यही है कि हमें खाद्य पदार्थों को जो न्यूट्रिएंट हैं वो जमीन को देना है और जमीन को जो हम देंगे तो जमीन में ताकत होगी और जमीन में ताकत होगी तभी उससे हम फसलें पैदा कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में उनकी जो प्रोडक्टिविटी हमारी होगी वो लेंगे। और जहाँ तक इन द्वीपों की बात हुई तो दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, एक तो फ्लैट लैंड होती है और एक आपकी पहाड़ी भूमि होती है। तो उसमें ये पाया जाता, पहाड़ी भूमि ज़्यादातर हम देखते हैं तो नारियल है, सुपारी है और हमारे स्पाइसेस हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। और अगर इस तरह की ज़मीन में देखें तो हमारे फ्लैट लैंड्स में सब्जियाँ हैं, धान है। और सुनामी के बाद यदि हम देखें तो हमारी जो भूमि की भौतिक दशा है, यूँ कहें कि जो सॉइल है, ये इसमें काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है। और हम तो यहाँ तक कि अपने किसान भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं संदेश के माध्यम से कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग वो कम करें, बल्कि गोबर की खाद का प्रयोग या कंपोस्ट खाद का प्रयोग या हरी खाद का प्रयोग, इन खादों के प्रयोग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किसानों को बताया जाता है कि कंपोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल में लाएं, तो कंपोस्ट और जो रासायनिक उर्वरक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, आपने साफ बताया कि जमीन में पोषक तत्व कम है तो इसके लिए ऊपर से हमें देना होता है, तो इन दोनों के इस्तेमाल करने से क्या अलग अलग प्रभाव होते हैं?

0: इसमें ऐसा है कि जैसे आप इसका छोटा सा उदाहरण आप देखें, यदि हम आप बाजार में जाते हैं और देखते हैं आजकल जो हमारी सब्जियां आ रही हैं, आप देखेंगे सब्जियां बहुत अच्छी हैं और सब्जियों में चमक है।
1: जी
0: तो एक तरफ अगर इसका हम विश्लेषण करें तो एक लोगों के अंदर, हमारे किसानों के अंदर और सभी के अंदर, एक जन सामान्य साधारण के एक माइंडसेट लोगों को बन गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ये रासायनिक उर्वरक, जैसे यूरिया नाइट्रोजन के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, स्वाभाविक ही वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का काम है। ये हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल एक्शन, वो इसमें यही है कि नाइट्रोजन का काम है वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अभी ये ध्यान देना कि अधिक से अधिक मात्रा नाइट्रोजन का प्रयोग करें, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक हो, पैदावार अधिक हो। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हम आजकल ये भी देखते हैं बाजार में कि ऑर्गेनिक का डिमांड ज्यादा है और रासायनिक खाद, और जो ये कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद, इसका सबसे बड़ा अंतर यह है कि रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग है वो तो तुरंत आपको देखने को मिलेगा लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएगा,
1: अच्छी बात
0: नंबर वन। नंबर टू यह है कि उसका कहीं ना कहीं, जो चूंकि रसायन है तो कहीं ना कहीं ये हमारे मे बी इन लॉन्गर रन हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
1: जी हाँ
0: लेकिन जहां तक कंपोस्ट की बात है या गोबर की खाद का है या जैविक खादों का प्रयोग है, खेती में करें, अपने जमीन में मिलाएं और जिससे पैदावार लें, तो मैं ये समझता हूं कि इसका कोई ह्यूमन पर, इसका इल हेल्थ, ये
1: प्राकृतिक है
0: जी, तो इसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: तो डॉक्टर
0: जी
1: साहब, इसको मेरे ख्याल से एक उदाहरण के तौर पर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम इंसानों में अगर कुछ कमजोरी होती है, या तो हम सीधे विटामिन की गोलियां ले सकते हैं
0: जी
1: या फल सब्जियां खा सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: विटामिन की गोली, जैसे आपने कहा, तुरंत
0: जी
1: असर होगा लेकिन
0: जी
1: वो ज़्यादा दिन तक असर बना नहीं
0: बना
1: रहेगा,
0: नहीं रहेगा।
1: जबकि
0: जी
1: फल सब्जियां, संतुलित आहार
0: जी
1: खाएंगे तो
0: जी
1: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
0: जी
1: तो ये एक सामान्यता इसमें हम देख सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: खैर डॉक्टर साहब, कंपोस्ट अगर किसान भाई बनाना चाहते हैं,
0: जी
1: अक्सर किसान भाई बनाते भी हैं, जैसे
0: जी
1: आपने कहा कि इकट्ठा कर देते हैं, डाल देते हैं, सड़ा
0: जी
1: देते हैं,
0: जी
1: लेकिन एक
0: जी
1: वैज्ञानिक तरीके से, सही तरीके से बनाना चाहें तो
0: जी
1: उन्हें क्या-क्या करना होगा, आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं।
0: तो हर एक घर में कहीं ना कहीं छोटा सा, जिसमें ये सब्जियों का ढेर है, सब्जियों का जो किचन वेस्ट है या वेजिटेबल का वेस्ट है, फार्म का वेस्ट है, गोबर है, या कि किसी के पास जानवर रहते हैं उनके अपना जो उनका मल मूत्र है, सब इकट्ठा करके एक जगह ढेर कर दिया जाता है। ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ। जब हम कोई बात करते हैं अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी इल्ड के लिए, कि जमीन की हमारी उर्वरा शक्ति, जो सॉइल फर्टिलिटी है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे, तब हम बात करेंगे वैज्ञानिक सिफारिश की। तो
1: अच्छा
0: हमारी जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो ये है कि 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा,
1: अच्छा
0: इतना जो इस स्टैंडर्ड साइज है हमारे गड्ढे की, कंपोस्ट पिट की, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा।
1: अच्छा
0: और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसके लिए कई विधियां हैं, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं, बंगलोर विधि है, इंदौर विधि है, तमाम तरह की विधियां हैं। सबकी साइज अलग है, सबके सिस्टम अलग हैं, सबकी मेथोडोलॉजी अलग है, एडॉप्शन उसके प्रैक्टिस अलग हैं, लेकिन सबका निचोड़ यह है कि कम समय में कैसे अच्छे से अच्छे हम न्यूट्रिएंट वाला अच्छा कंपोस्ट हम प्राप्त करें,
1: जी
0: ये बात आती है। तो तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक निचोड़ तरीका बनाया गया कि अगर स्टैंडर्ड हमारा प्लॉट साइज होगा, और लगभग मैं समझता हूं कि ये 4 महीने में, 4 मंथ्स लगते हैं प्रोसेस में, और
1: अच्छा
0: 4 महीने में कंपोस्ट आपका बनकर तैयार हो
1: ये
0: जाएगा।
1: जो गड्ढा बनाते हैं, जो पीट आपने कहा कि
0: जी
1: 5 मीटर लंबा चौड़ा और 1 मीटर
0: जी
1: गहरा,
0: जी
1: एक स्टैंडर्ड है ये
0: जी
1: साइज,
0: जी
1: तो इसको पक्का वगैरह कुछ करने की जरूरत
0: नहीं,
1: है?
0: यदि पक्का करें तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली ऐसा बहुत अच्छा बात आपने कही, इसमें लोग ऐसे कच्चा बना देते हैं और पक्का बना देते हैं। देखिए दो बातें इसमें हैं, कच्चा बनाएंगे और पक्का बनाएंगे, दोनों चीजों में अंतर है। कच्चा बनाने में क्या, बरसात होती है, मान लीजिए बहुत ज्यादा आपका ऐसा है कंपोस्ट, आपने ऐसी जगह आपने सिलेक्शन ऑफ साइट किया वे टू, जहां पर आपको कंपोस्ट पिट बनाना है, मान लीजिए जल निकास की व्यवस्था नहीं है, रेनी सीजन में पूरा पानी इकट्ठा होकर के और रन ऑफ होकर के सब उसी गड्ढे में आ जाता है, तो क्या करेंगे, तो हमारा कंपोस्ट का तो नहीं हो पाएगा।
1: बिल्कुल
0: तो इन दोनों दशाओं में हमको देखना पड़ता है। तो हमारी स्ट्रक्चर ये होता है कि यदि पक्का हो तो अच्छी बात है,
1: और जैसे आपने कहा कि जगह का स्थान भी, मतलब सोच समझ के करना
0: सोच समझ
1: चाहिए,
0: के इसका चयन करना है, जहां के ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो,
1: जल निकासी
0: सब
1: की
0: जल
1: अच्छी
0: निकास की,
1: व्यवस्था।
0: ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और महत्वपूर्ण एक इसका एक फैक्टर है, जो कि कंपोस्ट पिट जहां भी बनाएं वहां अच्छी तरह से देख लें कि आपका ये ड्रेनेज का वहां अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए
1: अच्छा,
0: जल निकास
1: तो
0: की।
1: एक बार ये जो गड्ढा है वो किसान भाई बना लें,
0: जी
1: तो इसके बाद कचरा डालने की भी कोई विधि होगी?
0: कचरा डालने के इसमें ऐसा है कि जो भी इकट्ठा करते हैं लोग अपना सामान्य तरह से लेते हैं, डालते रहते हैं, गोबर है हमारा, ये पशु का अगर मान लीजिए है, कि सारे को मिला करके एक जगह इकट्ठा करके आपको डालना है और इसकी एक परत लेयर आपको बिछा देनी है, ऊपर
1: अच्छा
0: ढक देना, कवर कर देना है। इसमें दो प्रोसेस है, एक तो एनएरोबिक होता है और दूसरा एरोबिक होता है। एरोबिक वाले में ये होता है कि एरोबिक प्रोसेस में आपका खुला छोड़ देते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे हिप बना करके सारा डंपिंग कर देंगे इकट्ठा मटेरियल और उसको खुला छोड़ देंगे।

0: तो कहने पर तो आरवी का मतलब उसमें जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और डिकम्पोजिशन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना बढ़िया डिकम्पोजिशन होगा उतना न्यूट्रिएंट वाला हमारा अच्छा कंपोस्ट बनेगा। और जो इसका कंपोस्ट की हमारी परसेंटेज होती है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की, वो है 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% आपका फास्फोरस और 0.5% हमारा पोटाश।
1: पोटाश।
0: ये मात्रा हमारी जनरल है, एवरेज है, और ये मात्रा हमारी वैरी करेगी। वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे उसमें अलग होगा, अर्बन का अलग होगा, रूरल का अलग होगा।
1: मतलब जो हिसाब से जो मटेरियल डालेंगे
0: जी
1: उस
0: जी
1: हिसाब
0: जी
1: से।
0: जो रॉ मटेरियल,
1: बिल्कुल, आपने कहा कि दो प्रकार से सड़ाया जा सकता
0: जी
1: है, एक
0: जी
1: तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में
0: जी जी
1: और एक को ढक के
0: ढक करके,
1: ऑक्सीजन की
0: कवर करके।
1: अनुपस्थिति में।
0: जी
1: तो हमारे द्वीपों की स्थिति में कौन सी रीति
0: मैं
1: ज्यादा
0: समझता हूँ
1: अच्छी
0: ढका वाला अच्छा है, कवरिंग वाला। अगर
1: अच्छी
0: कवर करके बनाते हैं तो उसका ये फायदा ये होगा कि उसमें टेम्परेचर आपका अधिक होगा, जल्दी आपका ये
1: सड़ेगा।
0: डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। और डिकम्पोजिशन के चूंकि बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और ये हम सभी जानते हैं कि इसमें प्रकार के जो आपके छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, मे बी बैक्टीरिया या अदर जो हमारे फंगल एक्टिविटी या जो भी चीजें हैं इस तरह का, ये सब इसमें काम करती हैं हमारे डिकम्पोजिशन को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो जितने ज्यादा हमारी ये बैक्टीरिया या माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसमें प्रेजेंस होगी, उतना अच्छा इसका विघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, और उतना बढ़िया आप देखेंगे इसका ह्यूमस, और उतना अच्छा खाद होगा, और वो ह्यूमस को ही डाला जाता खेत में अपने।
1: अच्छी बात, मतलब पूरी तरह से सड़ी हुई खाद ही डालनी
0: जी,
1: चाहिए।
0: और एक बात और बता दें यहाँ, जो सबसे बड़ा फायदा हमारे ये कार्बनिक खाद का, विशेषकर कंपोस्ट का है,
1: जी
0: ये जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉयल है, जो भूमि की जो भौतिक दशा है उसमें ये सुधार करता है। जो हमारा सॉयल टेक्सचर है, आप जो समझिए कहते हैं ना कि ये मिट्टी हमारी सैंडी है, क्ले है, लोम है, दोमट है, बलुई है, इसका जो मृदा कणों का जो आकार है, ये इससे बड़ा बहुत फायदा होता है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, ये इस तरह का काम करता है, एक बफरिंग एक्शन का काम करता है। जैसे इन द्वीपों की हमारी जो मिट्टी है, कहा जाता है कि एसिडिक इन नेचर, जो
1: अम्लीय
0: हमारी
1: मिट्टी।
0: अम्लीय मिट्टी है, और बाद में देखा जाए सुनामी के बाद तो कुछ थोड़ा सा नमक का पानी, जो साल्ट सलाइन वाटर इंट्रूशन हुआ फील्ड में, धीरे धीरे धीरे अपना उसका थोड़ा सा साल्ट
1: नमक
0: का
1: का
0: हुआ,
1: सार्व जी।
0: लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल दशा में हमारे आ रहा है, और पुनः हम धीरे धीरे वही उन्हीं चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे आवश्यक है कि ये कंपोस्ट जो है, मैं तो समझता हूँ हमारे किसानों के लिए, इन द्वीपों के लिए एक वरदान के रूप में, बूंद के रूप में है, कि यदि हमारे किसान भाई कंपोस्ट का प्रयोग करें और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जमीन के लिए
1: ज़्यादा अच्छा है
0: ज्यादा अच्छा होगा।
1: डॉक्टर साहब। ये जो सड़न की जो प्रक्रिया है
0: जी,
1: मोटे तौर पर कितने दिनों में पूरी हो जाती
0: ये आपका ऐसा है, 4 महीने में, आप 4 मंथ्स आप कहें,
1: है? अच्छा।
0: 4 महीने में आपके ये कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है, और एक अच्छा खासा हमको कंपोस्ट प्राप्त हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन इसके बीच में हमको क्या करना है, जैसे 1 महीने के बाद हुआ, और जैसे मैंने बताया कि ये बरसात शुरू होने के पहले आपका गड्ढा तैयार होना है,
1: जी
0: मतलब बिफोर दी रेनी सीजन, और इसके बाद जैसे आने के बाद, तो कम से कम 1 महीने के बाद जैसे है, उस पर आपका यूरिया का घोल बना करके, यूरिया का जैसे है, या कभी कभी ये भी करते हैं कि हमारे काऊ डंग का स्लरी बना लेते हैं, काऊ डंग का गोबर का स्लरी बना करके उस पर लेप लगा देते हैं। ये क्यों करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि इससे हमारा जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, ये उसमें तीव्रता आ सके
1: अच्छा,
0: और ये जल्दी से जल्दी ये बन सके,
1: सड़न तेज हो जाए।
0: सड़न तेज हो सके, इसका ये अभिप्राय है।
1: चलिए, अच्छी
0: जी
1: बात है। तो डॉक्टर साहब, पूरी तरह से सड़ी हुई जो कंपोस्ट की खाद होती है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है,
0: जी
1: लेकिन किसी कारणवश अगर खाद पूरी तरह से सड़ी नहीं है, उसका इस्तेमाल अगर खेत में करें तो इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता
0: देखिए,
1: है।
0: बहुत सही बात आपने कही। इसमें ऐसा होता है कि जब पूरी तरह से सड़ी नहीं डालेंगे, टर्माइट का अटैक हो जाएगा, दीमक लग जाएंगे,
1: दीमक लग
0: या
1: जाएगा।
0: कीड़े प्रकोप हो जाएंगे, तो हमारे पेस्ट एंड डिजीज के ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी प्रक्रिया वैज्ञानिक सिफारिश से की जाए, कहने का मतलब
1: जी हाँ,
0: वेल डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो सड़ा हुआ खाद है, उसी का प्रयोग करें तो बेहतर होगा।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपने जितनी सारी बातें बताई इस पर किसान भाई ज़रूर ध्यान देंगे और एक अच्छी तरह से कंपोस्ट बनाएंगे, जो तकनीक आपने बताई इसका इस्तेमाल करेंगे।
0: जी
1: तो डॉक्टर पांडे, आप कार्यक्रम में आए, बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: कंपोस्ट बनाने की सही तकनीक के संदर्भ में अभी आपने डॉक्टर घनश्याम पांडे जी से की गई ये बातचीत सुनी और जाना कि कंपोस्ट किस तरह से हमारे खेतों के लिए उपयोगी है और इसे बनाना भी कितना आसान है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। और साथियों, अब आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

0: भाइयों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं कि इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। लेकिन अब हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसका विषय है पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से। तो चलिए भाइयों, लीजिए ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के संदर्भ में। इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि अगर हमारी पशुओं की जो

0: नस्ल है वो ठीक नहीं है, तो हम जितने भी मेहनत क्यों न करें हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले पशुओं के नस्ल सुधार पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान का जरूर उपयोग करें। पशुओं के गर्मी में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम करवाएं। पशुओं में गर्मी आने का समय, गाभिन कराने व ब्याने की तिथियों का सही लेखा जोखा रखें। गाभिन पशुओं की समुचित देखभाल करें। गर्भावस्था के अंतिम 60 दिनों में यदि पशु दूध दे रहा हो तो उसे सुखा दें। ब्याने के समय और ब्याने के उपरांत गाय की व नवजात बछड़ों की समुचित देखभाल करें। आवश्यक प्रजनन संबंधी सूचना सारणी में देखें। जहां तक आहार का सवाल है, उपलब्ध सूखे चारे का समुचित प्रयोग करें। घास को काटकर पशुओं को खिलाएं, जिससे डंठल बेकार न जाए। इससे चारों की मात्रा का 10-15% भाग व्यर्थ जाने से बच जाएगा। चारे को खाने की नाद में ही खिलाएं। भूसे या घास की उपयोगिता बढ़ाने हेतु उन पर उनके भार का 1-1.5% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे चारे की पौष्टिकता व पचनीयता दोनों बढ़ जाती है और पशु को अधिक प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, हरा चारा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। पशु को भूसा आदि भिगोकर खिलाने से भी इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। चारा गाहों के चारों ओर बाड़ लगाएं और उसमें नियंत्रित चराई करवाएं। बछड़ों का आहार प्रारंभ से ही अच्छा हो, जिससे आगे चलकर अच्छी गाय, भैंस, बैल या सांड बन सके। बछड़ों को 2 सप्ताह की उम्र से ही चारा और दाना खिलाना सिखाएं। 3-4 माह की उम्र में माँ का दूध बंद कर दें। अच्छे घास के अतिरिक्त उन्हें 0.5 किलोग्राम दाना जरूर खिलाएं, जिसकी मात्रा 6 महीने बाद बढ़ाकर 1 किलोग्राम प्रतिदिन कर दें। ये मात्रा 1.5 साल में 0.5 किलोग्राम और बढ़ा दें। जहां तक गाभिन गाय के आहार का प्रश्न है, 6 माह की गर्भावधि के बाद भर पेट चारा खिलाने के अतिरिक्त 1 किलोग्राम दाना रोज खिलाएं। इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्याने तक 3 किलोग्राम रोज कर दें। दुधारू पशु को पेट भर चारा खिलाएं। चारे की मात्रा उसकी किस्म, उम्र, उत्पादन, मौसम, पशु भार आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। ये 6-10 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन हो सकती है। सामान्यतः दाने की मात्रा गाय को प्रति 2.5 किलोग्राम, भैंस को प्रति 2 किलोग्राम, दूध पर 1 किलोग्राम रखी जाती है और बरसात के दिनों में जब चराई अच्छी हो तो ये मात्रा कुछ कम कर सकती हैं। पशु आहार में खनिज लवण मिश्रण आवश्यक है। इसे दाने का 2% भाग कर सकते हैं। दूध उत्पादन लागत कम करने हेतु हरा चारा जहां संभव हो प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, पशु का आवास स्वच्छ, हवादार, रोशनी युक्त और आरामदायक हो, जहां पशु को प्रतिकूल मौसम में अधिक सर्दी, गर्मी व वर्षा से बचाया जा सके। दूध दोहन विधि सही, 2 समय निकालने का अंतर बराबर व क्रम नियमित हो तथा दूध पूरा व शीघ्रता से निकालें। गाभिन व हाल ही में ब्याए पशु व नवजात बछड़ों की समुचित देखभाल करें। जहां तक पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन का सवाल है, रोगी पशु के लक्षण जानना बहुत जरूरी है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं और उनसे सलाह लें। ऐसे उपाय करें कि पशु बीमार न हो। छूद के फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के रोग निरोधक टीके लगवाएं। किसान भाइयों, इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप पशुपालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे।
1: पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से। किसान भाइयों, अभी आपने इस विषय में ये जानकारी हासिल की और साथियों, हमें लगता है कि अब आपको इंतजार होगा आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने का। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा आज का प्रश्न था, धान के खेत में क्या सिंघी और मांगुर मछलियों को पाला जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है जी हाँ, धान के खेत में सिंघी और मांगुर मछलियों को पाला जा सकता है। आप सबने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी और सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा है?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने

0: और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: साथियों, इसी के साथ अब बातों और जानकारियों की कृषि जगत की इस संध्या को हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

को हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, और अब वक्त हो चला है जोश, उमंग और मस्ती से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम पॉप मसाला का। आज के इस रंगारंग संगीत सफ़र में आपके लिए पॉप हिट्स, शानदार रिमिक्स और ऐसे गीत जो आपके मूड को बना देंगे और भी खुशनुमा हम आपको सुनाएंगे।

चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले धमाकेदार गीत के साथ, जिसे हमने लिया है आई हेट लव स्टोरी फिल्म से। शफकाल अमनाथ अली, सुनिधि चौहान के गाए इस गीत को लिखा है कुमार ने तथा रीमिक्स है डीजे किरण का।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हीरोपंती फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गाना। इस गाने के गायक कलाकार हैं मोहित चौहान, संगीतकार है साजिद वाजिद, गीतकार कौशिक मुनीर तथा इसे रिमिक्स किया है डीजे एंजल ने।

हम तुम शबाना फिल्म का एक गाना, जिसे स्वर दिया है अभिषेक नेलवाला, पलाश सेन और अनुष्का मनचंदा ने। गीतकार हैं समीर अनजान व संगीतकार है सचिन जिगर। रीमिक्स है किरण कामनाथ के का।

श्रोताओं, अब पेश है हेट स्टोरी 2 फिल्म का एक गीत। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है और बोल मिथुन का है। इसे रिमिक्स किया है डीजे चेतस ने।

श्रोताओं, अब सुनते हैं मिक्का सिंह के रिमिक्स किए एक गीत जिसे संगीत से सजाया है सचिन जिगर ने। ये एंटरटेनमेंट फिल्म का गीत है।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसके बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, स्वर दिया है ममता शर्मा के हैं तथा इसे रिमिक्स किया है डीजे किलोग्राम मिक्स ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज शाम 7:20 पर कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया।

चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8 बजे। आज रात 10 बजे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं।

कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स का मैं आप जानकारी लेंगे। विषय रहेगा कंटूर बडिंग। कल सुबह 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित रहेगा जिंदगी शीर्षक पर। कल सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म सॉन्ग बेस्ड इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम।

कल सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म सॉन्ग बेस्ड इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम।

0: कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में TS गोपाल कृष्णा को आप सुन पाएंगे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। कुछ ही पलों के बाद यानी संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय सेशेल्स यात्रा में समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग पर सहमति बनी। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सांख्यिकी दिवस पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि भारत की सांख्यिकी प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है और प्रणाली पीढ़ियों से राष्ट्रीय गौरव का स्रोत रही है। देशव्यापी खेत बचाओ के अंतर्गत तुष्णाबाद में किसानों को वैज्ञानिक और जलवायु अनुकूल खेती का प्रशिक्षण दिया गया और डंडस पॉइंट से संचालित कुछ व्हीकल फेरी सेवाओं में 1 जुलाई से परिवर्तन लागू होगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और

समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली की एक विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने यह सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर पी के मिश्रा ने आज नीति निर्माण और शासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग की आवश्यकताओं पर बल दिया। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि भारत को डेटा आधारित निर्णय लेने में विशेषज्ञ बनना चाहिए ताकि नीति निर्माण और कार्यान्वयन अधिक सटीक हो सके। श्री मिश्रा ने कहा कि भारत की सांख्यिकी प्रणाली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक माना जाता रहा है और यह पीढ़ियों से राष्ट्रीय गौरव का स्रोत रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक केवल प्रामाणिक और त्रुटिरहित आंकड़ों के आधार पर ही विकसित भारत बन सकता है। सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी रहे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जन जागरूकता, विशेषकर युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, खेत बचाओ अभियान और व्हीकल फेरी सेवा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री विजयपुरम स्थित ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दक्षिण अंडमान के तूसनाबाद गांव में टिकाऊ मृदा एवं कृषि संसाधन प्रबंधन पर जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन तथा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी दक्षिण अंडमान के सहयोग से किया गया। वैज्ञानिकों ने मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, नियमित मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैव उर्वरकों, हरी खाद तथा दलहनी फसलों के समावेश से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया। किसानों को जीवामृत और नीमास्त्र जैसे स्वदेशी जैव इनपुट के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया गया, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सके। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत मौसम आधारित कृषि परामर्श के महत्व की जानकारी देते हुए समय पर बुआई, सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन तथा कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए मौसम पूर्वानुमान अपनाने की सलाह दी गई। मत्स्य पालन विशेषज्ञ ने वैज्ञानिक तालाब प्रबंधन, जल गुणवत्ता, संतुलित आहार और रोग नियंत्रण के उपाय बताए। किसानों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए वैज्ञानिकों एवं जलवायु अनुकूल खेती अपनाने का संकल्प लिया।

0: कार्यक्रम में लगभग 40 किसानों ने भाग लिया। डंडस पॉइंट और चाथम के बीच चलने वाले व्हीकल फेरी के समय में संशोधन किया गया है। संशोधित सारणी के अनुसार डंडस पॉइंट से सुबह 9 बजे संचालित होने वाली व्हीकल फेरी अब 9:10 पर छूटेगी। इसके अलावा यह व्हीकल फेरी शाम 3:20 और 7:35 पर जाएगी। वही चाथम से दोपहर 2:50 तथा शाम 7:15 पर डंडस पॉइंट के लिए रवाना होगी। शेष सभी व्हीकल फेरी का समय अपरिवर्तित रहेगा। यह संशोधन 1 जुलाई से लागू होगा। दक्षिण अंडमान के क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नौकाओं के पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए प्रस्तावित सूची जारी की है। यह कार्रवाई उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन तथा नौकाओं की वर्तमान भौतिक स्थिति के आकलन के बाद रियल क्राफ्ट पोर्टल पर मत्स्य नौकाओं के आंकड़ों के संशोधन एवं व्यवस्थित प्रबंधन के तहत की गई है। सहायक निदेशक मत्स्य पालन द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रस्तावित सूची अंडमान निकोबार प्रशासन और मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट दक्षिण अंडमान के क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय मत्स्य उपकेंद्रों तथा विभिन्न फिश लैंडिंग केंद्रों के सूचना पटों पर प्रकाशित कर दी गई है। इसका उद्देश्य नौका मालिकों संचालकों एवं अन्य संबंधित पक्षों को जानकारी उपलब्ध कराना है। यदि किसी व्यक्ति को सूचीबद्ध नौकाओं के संबंध में कोई आपत्ति दावा अथवा अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करनी है तो यह आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय दक्षिण अंडमान में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा में समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग पर सहमति बनी। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सांख्यिकी दिवस पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि भारत की सांख्यिकी प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है और प्रणाली पीढ़ियों से राष्ट्रीय गौरव का स्रोत रही है। देशव्यापी खेत बचाओ के अंतर्गत तुष्णाबाद में किसानों को वैज्ञानिक और जलवायु अनुकूल खेती का प्रशिक्षण दिया गया और डंडस पॉइंट से संचालित कुछ व्हीकल फेरी सेवाओं में 1 जुलाई से परिवर्तन लागू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
3: लोगों ने कहा कि आप तो बात
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:17 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं।

सेवाओं को सूचित किया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। इस बीच हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना से होगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा गया है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाए। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

जलियांवाला बाग मंगलवार 1 जुलाई 2026 को सवेरे 9 बजे शिवजयपुरम से कैमल बे के लिए प्रस्थान करेगा। यह जलियान ननकौरी होते हुए कैमल बे पहुंचेगा तथा इसकी वापसी यात्रा 3 तारीख को कैमल बे से छूटकर ननकौरी होते हुए शिवजयपुरम के लिए होगी।

एमवी जॉली बॉय 1 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। यह जलयान मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इसकी वापसी यात्रा 2 जुलाई को प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से शुरू होगी और मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम पहुँचेगी।

एमवी कालीघाट 30 जून को रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी यात्रा 1 जुलाई को प्रातः 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट 3 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए प्रस्थान करेगा। यह जलयान लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार जाएगा। इस जलयान की वापसी यात्रा 4 जुलाई 2026 संध्या 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी सेंटिनल 9 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से कैमल बी के लिए प्रस्थान करेगा। यह जलयान लिटिल अंडमान, कार्निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल, ननकौरी, कमोटा और एफ्रा बे होते हुए कैमल बे पहुंचेगी। इसकी वापसी यात्रा 13 जुलाई 2026 को प्रातः 5 बजे कैमल बे से श्री विजयपुरम के लिए प्रारंभ होगी। वापस में यह जहाज उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

एम वी बाराटान 30 जून 2026 मंगलवार सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से रंगत के लिए रवाना होगा। यह जलयान स्वराजदीप एवं लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा। इसकी वापसी यात्रा उसी दिन दोपहर 12 बजे रंगत से प्रारंभ होगी तथा ये लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एम वी कमोटा 30 जून 2026 मंगलवार को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी यात्रा उसी दिन सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से प्रारंभ होगी तथा ये श्री विजयपुरम वापस आएगा। एम वी जॉली बॉय 30 जून 2026 मंगलवार को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा। इसकी वापसी यात्रा उसी दिन सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से प्रारंभ होगी तथा ये जलयान श्री विजयपुरम वापस आएगा।

एंड दी नॉर्थ पैसेज 30 जून 2026 मंगलवार को सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। यह जलयान उसी दिन दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा तथा दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा 30 जून 2026 मंगलवार को दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। यह जलयान उसी दिन दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा तथा सुबह 3:30 पर शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड 30 जून 2026 मंगलवार को दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी यात्रा उसी दिन 4:30 पर शहीद द्वीप से प्रारंभ होगी तथा श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी 30 जून मंगलवार को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगी। इसकी वापसी यात्रा 1 जुलाई 2026 बुधवार को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से प्रारंभ होगी तथा ये शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट करने

अगले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जन सूचनाएं समाप्त हुई।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। श्रोताओं, इस समय संध्या के 7:30 होने वाले हैं। अभी हम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे। दिल ने फिर याद किया, इस कार्यक्रम का आरंभ में सुनते हैं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का एक गाना। इसे गाया है करुणनाथ ने, बोल स्वानंद किरकिरे के हैं और विनोद चोपड़ा का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस माह का पांचवा सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें।

दोस्तों, जब किसी की मासूमियत और सादगी दिल को छू जाती है, तब प्यार सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके हर अंदाज से मोहब्बत होने लगती है। उसकी झुकी नज़र, शर्म से झुकता चेहरा और हल्की सी मुस्कान दिल पर ऐसा असर छोड़ते हैं कि हर मुलाकात एक नया एहसास बन जाती है। इंसान चाहता है कि सामने वाला अपनी झिझक छोड़कर अपने दिल की बात कह दे। उसे लगता है कि इस मासूम रिश्ते में बनावटीपन की कोई जगह नहीं, सिर्फ सच्चाई और अपनापन है। जब दो दिल बिना ज़्यादा शब्दों के एक दूसरे को समझने लगते हैं, तभी मोहब्बत सबसे खूबसूरत लगती है। उस पल ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ किसी की यही सादगी और शर्मीली मुस्कान है, जिसने बिना कुछ कहे ही दिल जीत लिया।

दोस्तों, जब दिल किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तब उसकी हर धड़कन एक मधुर धुन बन जाती है। वह चाहता है कि उसके प्यार में सिर्फ दो दिल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुस्कुरा उठे। मिलन की उम्मीद, साथ निभाने के सपने और जन्म जन्म का विश्वास हर एहसास को और खूबसूरत बना देते हैं। अगर जुदाई का दर्द भी मिले तब भी दिल अपनी मोहब्बत की मिठास को कम नहीं होने देता। उसकी यही चाह होती है कि प्यार का यह सफ़र कभी ख़त्म ना हो और उसकी धड़कनों से निकल रहे हर एहसास एक ऐसी कहानी बन जाए जिसे लोग बरसों तक याद रखें। जब मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए कि हर मौसम, हर पल और हर सांस उसी के नाम हो जाए, तब दिल बस एक ही काम करना चाहता है, गुनगुनाते रहना और प्यार की धुन सुनाते रहना।

दोस्तों, सच्चा प्यार हमेशा साथ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी यह किसी को पूरी उम्र अपने दिल में बसा कर उसकी खुशियों की दुआ करने का नाम भी होता है। इंसान जानता है कि वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे और वह शख्स किसी और की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसके साथ बिताया हर पल दिल के सबसे खूबसूरत कोने में हमेशा के लिए बस जाता है। शिकायत करने के बजाय दिल उसकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। यही निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है कि दूर होकर भी अपनापन कम नहीं होता। इंसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहें और जिस जगह प्यार पहली बार जन्मा था वह जगह कभी खाली ना हो।

0: मैं तुझको बिछा कर।
1: दोस्तों, सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता। समाज की बातें, लोगों की सोच और हालात अक्सर दो प्यार करने वालों की राह में रुकावट बनते हैं। लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो ये मुश्किलें भी उनके इरादों को कमज़ोर नहीं कर पाती। जो लोग दिल से प्यार करते हैं, वे दुनिया के डर से अपने कदम पीछे नहीं हटाते। उन्हें भरोसा होता है कि सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है और साथ निभाने का वादा होता है। मंजिल चाहे देर से मिले, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहें तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। आखिरकार प्यार वही है जो हर परीक्षा के बाद भी पहले जैसा सच्चा और मजबूत बना रहे।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह यादें कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अब हम आपको सुनवाते हैं गंगा मेरी माँ फिल्म का एक गाना। आवाजें हैं आशा भोसले की, बोल गुलशन बावरा का है व संगीत RD बर्मन का है।

0: श्रोताओं, अब पेश है रुना लैला और भूपेंद्र की आवाज़ों में एक गीत। बोल गुलजार के हैं व धुन बनाई है जयदेव ने। फिल्म का नाम है घरौंदा।
1: दो दीवाने शहर में

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है घराना फिल्म से, बोल आनंद बख्शी के हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई है, इसे गाया है सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज़ ने।

श्रोताओं, अब सुनते हैं बप्पी लहरी की संगीत निर्देशन में तैयार एक गीत रचना। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले, शबीर कुमार कुमार सानू ने तथा इस गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने।

श्रोताओं, अभी आप कुमार सानू की आवाज़ों में एक गीत सुन रहे थे जिस गीत के बोल लिखे थे इंदीवर ने। अब सुनिए घरौंदा फिल्म का एक गीत, बोल गुलजार के हैं व संगीत जयदेव का है। गायक कलाकार है भूपेंद्र।

अगला गीत सुनते हैं गजब फिल्म से, लता मंगेशकर के स्वर में, जिसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा बोल आनंद बख्शी के हैं।

इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपाल अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों में प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर

इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपाल अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों में प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए, राजपत्रित गैजेट, गैर मंत्रालय नॉन मिनिस्ट्रल नियुक्ति के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी हो या मैट्रिक लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो या मैट्रिक लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा हो या अभ्यर्थियों के पास किसी भी माननीय प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया पार्ट ए एवं पार्ट बी एग्जामिनेशन उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष की व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 54 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित परपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज संकलन करने होंगे। बायोडाटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, पिछले 5 साल की अपार एवं ACR सर्टिफिकेट प्रतियां। अभ्यर्थियों अपना आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार अब यहीं समाप्त होता है। अब सुनिए गौरव गान।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techy new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गौरव गान।

अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी।

स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी।

0: गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने
1: परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए

0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य

0: This has also led to greater exchange, the inflow and outflow of tourists more effective. So I think Indians are more aware of what Seychelles is about and how our cultural roots are tied. Binding the people together is really one of the most effective ways of making diplomatic relations go stronger.
1: As you have rightly mentioned, Professor Mishra, the Prime Minister also, while speaking in a joint press statement, said that the vision of the leaders is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. Thank you so much for sparing your valuable time. Thank you for joining us for Spotlight tonight.
0: Thank you for the opportunity.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's visit to Seychelles, strengthening maritime and bilateral ties. The participants were Professor Rahul Mishra, international affairs expert, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: Spotlight. ఆకాశవాణి
4: क्या भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश। आपका स्वागत है डॉ रजनीश कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूले। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
5: प्रियंका जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
4: जी।
5: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
4: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
6: जी नमस्कार मैडम।
4: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
6: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
4: जी।
6: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए
4: जी।

0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले
1: जी
0: इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहां उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं,
1: जी
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम सीजीटीएमएसई बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम सीजीटीएमएसई से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है,
1: जी
0: 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी,
1: दी हैं
0: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें
1: जी
0: देनी थी। और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं।
1: दी
0: तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल
1: जी
0: एंटरप्राइजेस हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त
1: उपलब्ध
0: हो
1: हो
0: सके।
1: जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा
0: जी
1: कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो सीजीटीएमएसई, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता
0: इसमें
1: है।
0: 2 बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो आरबीआई की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने आरबीआई से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो
1: जी
0: 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है, तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है।
1: जी
0: तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि एमएसएमईज अपने व्यवसाय विस्तार को आगे
1: जी
0: बढ़ावा दे रहे
1: जी
0: हैं।
1: बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी
0: आपने जो प्रश्न पूछा, इसके 2 भाग हैं।
1: जी
0: पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है।
1: करनी हो।
0: और दूसरी बात यह है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप

0: को मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है पीएमएस, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहां गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे सीजीटीएमएससी से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी एमएसएमई एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया सीजीटीएमएससी का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो सीजीटीएमएससी जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेने का, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे सीजीटीएमएससी का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
0: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान।
1: जी
0: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
2: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहां पर अपने श्रोताओं को यह भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमईज इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमईज के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
2: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस वजह से?
2: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ दें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी

0: अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एस एम ए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एस एम ए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: जी मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं एमएसएमई उनको और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती है?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूं, जहां तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आप स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो है वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: जो ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर।

0: हैं, और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
2: हेलो
1: जी। हाँ, अपना सवाल पूछे।
2: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
2: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
2: अच्छा, एक्चुअली में हमारा ना बुटीक है
1: जी
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पे 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि एमएसएमई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है, और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है, इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये

0: कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी,
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं और अब समय हो चला है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें हम आपके भेजे हुए संदेश के जरिए गीत सुनवाते हैं आपके पसंद के। इस कार्यक्रम है संदेशे आते हैं।

राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार ने फरमाइश की है सावन की घटा फिल्म का एक गीत। इसे स्वर दिया है आशा भोसले ने, संगीत ओपी नायर का है और गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

गडांगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे एवं परिवार ने फरमाइश भेजी है फिल्म नसीब के एक गीत को। चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है ग्राम पौजनिया जिला जौलन उत्तर प्रदेश से, जहाँ से सतीन्द्र कुमार चौंसलिया आदर्श सार्थक और आलोकिक चौंसलिया सुनना चाहते हैं फिल्म वो कौन थी का एक गीत। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

बुल्धाना जिला के नलेश्वर नगर से पीएस नहावकार एवं परिवार तथा मलकापुर से सोपन तांडे नारायण इंगल की फरमाइश आई है फिल्म आराधना की। गीत के बोल हैं, कोरा कागज़ था ये दिल मेरा।

अगली फरमाइश आई है फिल्म बिच्छू से। इस गीत को सुनना चाहते हैं सिद्धार्थ गोंडने, अर्चना गोंडने, प्रलय और हीरामंड।

0: श्रोताओं, इन्हीं मधुर सुरों के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। संदेश आते हैं, इस कार्यक्रम से मुझे अनुमति दीजिए। अब अपने संदेश और अपने पसंद के गीत हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहिए, ताकि अगली बार आपकी फरमाइश भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके।
1: Mm-hmm.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को सूचित किया जाता है कि अन्य

तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 2 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30:17 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। हमारी प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हमारी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती

है। ये थी मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30, 17 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। हमारी प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हमारी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि यानी 30 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:26 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।